प्रोग्राम का तीजा सैगमेंट जिद असी अक्सर ब्लेंडड सोंग कला साहित्य आले दुआले की हो रहा वो गल असी करते हैं गलच गल यह है प्लेंटी वैली एफ एम थोड़ा लोकल रेडियो स्टेशन नवी नवी फिल्म नवे नवे तजर्बे होंगे ने तो जिमें मैं अक्सर गल करता हूँ कि हूँ बनावटी बुद्धि का जमाना है गाने भी बदल जाते हैं गीत बदल रहे हैं साडा संगीत बदल रहा है साढ़े आले दुआले जो कुछ वापर रहा है जो कुछ घटना होंगी है वो करके सी हर तरह प्रभावित करते हैं आई ट्यून तुम सुन रहे हो ये पंजाबी गाने की ट्यून है पर हूँ जे तुम सुनोगे कि आदि दिनों के तुम नवे नवे तरह के गीत सुनने पैणगे पुराने गाणियों नवे मिक्स करके सुना की गल होगी तो कोई हैरानी नहीं होगी ये भी सुनो जरा